राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिना करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाऊ हर जन केवट भाग वडेरे जन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिल त्रिपता सह मिल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखा लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवां काहे रे मानो चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्र मैं जन तो पाए ता कर जिका गै कर तरिया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया राउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर काही मन पौ करिया उडे उड़िया वैसै कोसां तिस बाचै बजरे शरिया तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सत बल जाइए तेरा अंत न पारा भरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपार सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सरजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव संतो जी सब दुख विसारण हार हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे जोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद वैन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेवा है जो सेवा तुद जी जन नानक दिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी से मुक्त भये जन हर त्याया जी तन तूटी जमकी फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तन का पौ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करहें हर पूजा जी तप तप हैं जप हैं बेअंता तेरे अनेक पढ़ हैं बहुस्मृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव हैं मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परम पर करता जी तुद जीवड़ वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सरज सब गोई
जन नानक गुण गावे करते के जीन जो सब से का जन होई आसा महला चौथा तू करता सजियार मैडा साई जो तुम पावे सोई तीसी जो तू देहे सोई हम पाई रहो सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहे ऐतन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया

भजन की रहे ब्यासा। तुम है शाड़ कोई अबर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, जन जन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे भरे आए, मरण काल का द्रास ने भरे आए। हूँ जो सदा हमारे बच्चा, सरिया सुजू करे और अच्छा।

पुरी चतुर्दश घंटा काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए सबजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दंत जशन उपजायो

तुमरा लखा न जाई प्रसारा के बद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कई पूपा आंडज झेरज सेधज किन्ने उत्पज खान बहोर राज देने कहूं भूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सुयाम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सेखो बार सिख संग्रह दोष जिते उठव दुद पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्त हो तब शरणी परे दिन के दोष दुखता वह मरे पुरख जवन पग भरे तिहारे दिन के तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट नहीं आए है रक्षा होए ताई सब काला दुष्ट रेष्ट डरे तत्काला कृपा दृष्ट धन जाहि निहरि हो ताके दाब धन कमो हरि हो रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शास सग न कोई एक बार जिन तुम संभारा काल पास दे ताई उबारा जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दोष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम शरण तिहारी आप हाथ दहले उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दोष्ट दोख ते ले बचाई खड़ग के तुम शरण तिहारी आप हाथ दहले उबारी सर्व ठावर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले बचाई राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्द तंगा वो हरि केरा मन जनी बसाया कै नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा अंकार ज सब सवारना सब ना गल्ला समरथ स्वामी सुख मनो बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटहो जिस दी आए बढ़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सौ तिद कर सुपागै कर सुपाग शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया

आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर

तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो राखनहार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो राखनहार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओ सुहिलारा गुड़ जी महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्ता किया करते रहो विचार सतगर गाव सुहिला सिवरो सजनहार तुम गाव मर मर पौका सुहिला हाँ वारी जब सुहिला सदा सत हो राव नैत नत जीगड़ संभालिया न देखा गा देवनहार तेरे दान किमत ना पवै तसदा ते कवन सुमार संबत सा लिखया अमल कर पावो तेल देव सजना सी सुड़िया जहो वै साहब सा मेल हर घर एहो पहुंचा सदने नत पवन सदनहारा सिमरी है नानक से दी अवन रागासा महला पहला छे कार छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होई सो कर राख बढ़ाई तोय राव बिस जसिया कड़िया पहरा थिती वारी माह होवा सूरज को रुत अनेक नानक करते के तेवे सौ राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चबरू करे सगल बनराई फूलांत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहत शब्द व जंत पेरी रहाओ सह सब नैन नन नैन है तोय कौ सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नान एक पद गंध वैन सहस सब गंध विचाल तमोई सब मैं जो जोत है सोए दिसदा चानण सब मैं चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस भावे इस वारती होए हार चरण कवल मकरंद लोभत मनो अन दिन मोह आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग कौवे जाते तेरे नाहि वस गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर व परया मिल साधु खंडल खंडाही पूर्व लिखत लिखे गुरु पाया मन हर लिव मंडल मंडाही कर साधु अंजलि पुन वडाही कर डंडाओत पुन वडाही राव सागत हर रस साध न जानिया तने अंतर हो मैं कंडाही ज्यों ज्यों चले जुबे दुख पावे जमकाल सहे सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमाणे दुख जन्म मरण पव खंडाही अविनाशी पुरख परमेश्वर बसो खंड वै मंडाही हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वडाही जन नानक नाम दार ठीक है हर नामे ही सुख मंडाही रा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला इहां खाड़ चलो हर लाहा गया बसन सुहेला औद कट दिन सरहणारी मन गुर मिल का सवारी रहाओ इस संसार विकार संसिम है करो ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाई पिया वही रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो अर गुरते मने बसेरा निज कर महल पाओ सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा अंतरजामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की दूरे अंतरजामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की दूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: गुरु रूपी सतसंग जी, आप सब जानते हो कि सिख इतिहास बहुत विशाल है। साथों लिखदियां गाउंदियां तो अनेक ही भुलां हो गई होंगी। आप जी बख्शनहार हो, आओ फतेह का जवाब फतेह दियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
3: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call
5: 250-392-3874. Bara ma ma je mahalla panwa ghar chautha ik oankar satguru.

कत पाए विश्राम। जित घर हर कंत ना प्रगटई, भट्ठ नगर से ग्राम। सर्व सिंगार तंबोल रसे, सण देही सब खाम। प्रभु स्वामी।

0: नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा तुखारी राग दे अंदर उचारण कीता ए बारामा। आप भी अपने विचार चेतर दे महीने तो ही आरंभ करते ने। सिख जगत दे चूंके मूल पाठ माज राग दा बारामा गुरु अर्जन देव जी महाराज दा प्रचलित है। संगत दी ज्ञात लई स्रोतियां दी ज्ञात लई तास नाल तुखारी राग दे बारामा दा भी पाठ ते विचार रख रहे हैं। इस दे विच भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज खेड कर्मां दी ही दसते ने, ग्रह नक्षत्रां दी नहीं। किधरे ए भुलेखा पै जाए कि वाकई ग्रह नक्षत्रां दी गर्दिश दा ही मनुखी मन दे असर है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस मुगलते नूं इंज दूर करदे ने, तू सुन किरत कर्मा पूर्व कमाया, ऐ जीव सुन जो तू पूर्व देच कमाया है, पहले कमाया है, कीते जड़े तेरे कर्म ने उना करके ही तेरी झोली देच सुख ते दुख पैंदा है। कर्म बीज है, जैसे किसान बीज नूं बोण लगिया सावधान है, बीज चंगे होवन वधिया होवन गुण खादे ना होवन बहुत पुराने ना होवन। इसी तरीके दे नाल सियाणा सुजान सत्संगी विचार करदा है, सोचदा है, सावधान रहिंदा है, कोई ऐसा कर्म ना होवे जिस तों दुख पैदा होवे, क्योंकि दुख फल है, सुख फल है। अगर दुखां दा फल है तो ये फल ही दसदे पए ने बीज ठीक नहीं बोया सी। अगर सुख दा फल झोली विच आण पे है तो गल स्पष्ट हो गई, बीज ठीक बोए गए ने। साहिब कहिंदे सिर सिर दे उत्ते जो सुख प्राप्त होंदे ने, जीवां नूं जो सुख आनंद प्राप्त होंदा है, ये पूर्व कीती हुई कमाई दा, कीते हुए कर्मां दा। हर रचना तेरी क्यागत मेरी, हर बिन घड़ी न जीवा, हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी इस महान रचना दे मेरी की गति है, भाव मेरी की हालत है। हर बिन घड़ी न जीवा, बिरहा है मन दे, हे प्रभु तेरे नाम तो बिना एक घड़ी भी जीवना बड़ा औखा है। प्रे बाज दुहेली कोई न बेली, गुरमुख अमृत पीवा। परिपूर्ण परमात्मा तो जो जीव उस्त्री टूटी हुई है, दरअसल उसका फिर कोई भी बेली नहीं। एक बेली बन जाए सारा जगत बेली है, एक सज्जन बन जाए सारे ही सज्जन ने, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जब कोई उस एक नूं अपना सज्जन बना लेंदा है और गुरमुख बन के उसके नाम का ही जो है अमृत पान करता है, तो जीवन दी झोली सुख आनंद नाल भर जांदी है। रचना राच रहे निरंकारी, प्रभ मन कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले साधन तो सुन आत्म रामा। हे आत्म राम एक गल सर्वन कर, खेड उस निरंकार दी रचना दे कर्मा दी है, किसे नू दोषी ना ठहराई, न सूरज नू न चंद्रमा नू, न राहु नू न केतु नू, न शनि नू न मंगल नू, किसे ग्रह नक्षत्र दे उते दोष ना थापी और किसे मनुख नू भी दोषी ना ठहराई। जद भी अपने दुखां प्रति दोषी ठहराण दा तेरे मन विच ख्याल पैदा होवे तो फिर अपने कर्मां नू ही दोषी ठहराई। धन गुरु नानक देव जी महाराज हुण चेतर दे महीने दी विचार इंज आरंभ करदे ने। चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। चेत्र दा महीना दरअसल बसंत बहार दा महीना है, न बहुती गर्मी न बहुती ठंड, ऐसी ठंड है जो बर्दाश्त हो सकती है, ऐसी गर्मी है जो सहारी जा सकती है। इस रुत दे फुल पैदा होंदे ने, फुल बनस्पति देचों सब तो कोमल है, अति कोमल है, अति कोमल है और अति सुंदर है। सुंदरता देवी अत है, कोमलता देवी अत है और महक देवी अत है। तिन्ने ही गुण परिपूर्ण परमात्मा ने फुल्लां दी झोली विच पा दिते ने, सुंदर ने, कोमल ने, सुगंधित ने। ये अधिक स्वभावक खिड़दे ने बसंत दी रुत दे। ते बसंत दी रुत है चेतर दा महीना और चेत दे महीने तो ही इस देश विच साल आरंभ होता है। गिनती चेतर तो ही आरंभ होती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा हिरदा जो एक महान संत कवि दा हिरदा है, आप इस नूं इंज लैंदे ने, चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। बड़ा सुंदर महीना है, सोभनीक महीना है, चारों पासे फुल खिड़े ने, वनस्पति खिड़ी है और भौरे गुंजारा पा रहे ने। ए बंदे, फुल्लां नूं वेख के भौरा भी बोलन लग पे है, तू भी प्रभु दे गीत बोल, को तू भी गुंजारा पा, तू भी अलाप कर। तेनू नहीं अलापन ला ढंग आया, भौरे तो ही सिख ले। अलापदा पे फुल्लां नूं वेख के अलाप रहे है, राग प्रसन्न हो रहे है, खिड़े चे, चेत बसंत भला भवर सुहावड़े, बन फूले मजबार मैं फिर घर बावड़े। देखते सही घर बार वनस्पति चारों पासे खेड़ा ही खेड़ा है, बन फुले ने खेड़ा है, खुशियां ने कोयला पया बोल दिया ने, भवरे पे बोल दे ने। इस मौसम नु वेख के, इस रुत नु वेख के पंछी भी चहचहा रहे ने, भौरिया नु भी सुरत आ गई है। ए बंदे, तेनू सुरत नहीं आई, तेनू वो चेते नहीं आ रहा। भाई साहब भाई नंद लाल भी बकायदा इसका जिक्र करते ने, बाहोश बाश के हंगाओं में नव बहार आमद, बहार आमदो यार आमदो करार आमद। ए बंदे, होश दे चा, देखते सही मौसमे बहार आई है, चेत दा महीना आया है, बसंत बहार आई है, चारों पासे फुल खिड़े ने, तू मुरझाया होया है, तू खेड़े चा। देखते सही हजारा तरह दे नगमे लेके कोयला आ गई ने, बुलबुला आ गई ने, पौरे आ गए ने। खबर दे हंद बागुलहा कि शगुफ्तंद हमा, अजीन नवेद आंके बुलबुले हजार आमद। देखते सही हजारा तरह दे नगमे लेके बुलबुला आ गई ने, हजारा तरह दे गुंजार पांदे हुए भौरे आ गए ने। तेरा मन रूपी भौरा अजे भी चुप है, तेरे मन रूपी कोयल ने, बुलबुल ने अजे भी चहचहाना शुरू नहीं कीता। देखते सही मौसम तो रुत तो पंछी भी प्रभावित हो गए ने, कीड़े मकोड़े प्रभावित हो गए ने। देखते सही वनस्पति प्रभावित हो गई है, खिड़ पई है। तेरा मुरझाना ठीक नहीं, तू खेड़े दे चा। तो साहिब कहंदे ने, हां ऐसा हो सकता है, अगर वनस्पति खिड़ी होवे, फुल खिड़े होवन, भौरे भी गुंजारा पा रहे होवन, कोयला ते बुलबुला भी चहचहा रही होवन, पर हिरदे रूपी घर दे च परमात्मा दी याद ना होवे, इस घर दे च परमात्मा दी आमद ना होवे, तां बिरहे विछोड़े दी अगन दे च तन खिजदा है, मन पीड़ित होंदा है, फिर घर नहीं आवे। धन क्यों सुख पावे, बिरहे विरोध तन चीजे, कोकल अंब सुहावी बोले क्यों दुख अंक सहीजे। भावे अंबा दी डार ते कोयल बहुत मधुर पई बोल दिए, बहुत मिठे पई गीत अलाप दिए, पर अंब नू वेख के, पर ए जीव रूपी स्त्री किसनू वेख के अलापे। प्रभु दी आमद कोई नहीं, प्रभु दा चिंतन नहीं, प्रभु दी सूझ नहीं, तो स्त्री के नाल दुख दा सहारना हो रहा है। भवर भवंता फूली डाली क्यों जीवा मरवाए। भौरा ते फुल्लां दी डाली ते भ्रमण कर रहे है, आनंद ले रहे है, सुख ले रहे है, पर हे मां मेरा मन रूपी भौरा किस तरह आनंद माने जद प्रभु दा मिलाप ही नहीं। बसंती रुत भी चंगी लगती है जद कंत होवे, फुल्लां दा खेड़ा भी चंगा लगता है जद हिरदे नूं खेड़ा देण वाला कोई होवे। तो साहिब कहंदे ने परमात्मा दे नाल ही वास्तविक हिरदे दे तल ते बसंत बहार बनदी है। चेत्र दे महीने दा उदय आउंदा है, नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। जे चेत्र दे महीने विच तू परिपूर्ण परमात्मा नूं चेते करे तो तेरे हिरदे विच वाकई चेत्र दा महीना उत्पन्न हो जाएगा, बसंत बहार पैदा हो जाएगी और इस तरीके दे नाल जीवन दी नवी शुरुआत होवेगी। जिवें साल आरंभ आउंदा है, चेत्र दे नाल तेरी जिंदगी दी भी नवी आरंभता शुरू हो जाएगी। नवे जीवन दे ढंग उत्पन्न होंगे, नवा खेड़ा, नवा खुशियां और नवे हाव भाव, नवे तिरंगा नाल तेरी जीवन दी झोली भर जाएगी। चेत्र दे महीने विच गुरु अर्जन देव जी महाराज ते धन गुरु नानक देव जी महाराज माज राग विच और तुखारी राग विच जो मूल उपदेश ते संदेश देंदे ने ओ एही कि चेत्र दे तू चेते कर, चेत दे तू बार बार चेते कर ताकि तेरे मन विच भी चेत पैदा हो जाए बसंत बहार।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

हर सजन पुरख विसार के लगी माया धो। पुत्र कलित्र ना संग धना हर अवनाशी ओ, पलच पलच सगली मोई झूठे धंदे मो। इकस हर के नाम बिन अगे लिए खो, दो

ईमानी पढ़ो, पढ़ लो एक की है वाहिगुरु का गुण, तो लाश नीच है एक है तेरे वाला दूसरा है नहीं। ओंकार की है वाहिगुरु का गुण तू प्रकाशक है, रजो तमो सतो गुण तेरे विच हन, सत का वो तो गुण नहीं है, तेरा नौ सज्जन है, निर्वय वो गुण है, निर्भव का गुण। तो चाह करना इतने निर्वय नहीं करना कि इतनी ही गुण कौन है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी जितों मर्जी पढ़ लग जाओ वाहगुरु के गुण गाने शुरू करो, गुण गावत तेरी उदर समैन, लेखा का रह जाए कपड़िया की अखा की गलों की पिंडे की हों व्याप रहा बिख फैन, सुन किसी की मैल उतरूगी जी तेरे मन हौमे की लगी, गाह लिख दिता बिख फैल पढ़ने हिस्सों तेरे रोम रोम बिच फैल चुकी है हौमे की जह, क्यों फैली है दराखर के जड़ बिच पानी पा दो पत्ते पत्ते बिच रह जाते, वो मन है तुहाडा मूल जड़, ये हौमे की मैल लागी मन तेरे रोम रोम बिच फैल गई है, इको एक अदाज यही अदाज आशा दीवा कृपा करे जे अपनी गुर का शब्द कमा, गुरु का शब्द बाणी दो नहीं है, नाम से बाणी दो नहीं है, जितो मर्जी बाणी पढ़ो शब्द पढ़ना शुरू हो गया, जितो मर्जी शब्द गाना शुरू हो गया नाम जपना आरंभ हो गया। तो अग थोड़े चरणा सिख बेनती पहला तो याद रखियो कि असी होमे दे रोगी, हौमे दे सब लग चुके हैं, फिर जो याद करोगे फिर अनाज भी करोगे। हूं थोड़े चरणों में बेनती बहुत निम्रता देना जेड़े थोड़े विचों बाणी पढ़ते ने माई भाई भैन बैठिया ने माताओं गुरसिख जो बाणी पढ़ते हो ना उन्होंने चरणों की धूल मिले, गुरसिखा की हर धूल, पर जेड़े नहीं बाणी पढ़ते उन्होंने चरणों में सिर्ण वाके बेनती है कि अज गुरु ग्रंथ साहब जी तो एक मग मन के जाए अरदास करके जायो कि सतगुरु अज तो बाद मेरी जिंदगी का कोई दिन ऐसा न लंघे जिस दिन मैं जपजी साहब का पाठ ना करूं, एक बेनती थोड़ी कोई दिन सिखदा ऐसा नहीं लगना चाहिए जिस दिन जपजी साहब का पाठ ना करूं, और जॉब की प्रॉब्लम है टाइम की जे सवेरे नहीं होंगे दोपहरे में कल करो मैं थानू कोई फर्क नहीं है, काम सवेरे साढ़े नौ बजे शुरू होता है उपरों पौने दस बजे ने टिकट क्या चक्की फिर कहना स्नान काम चलिया, कोई फर्क नहीं है जे दोपहरे में भी टाइम ना मिले शाम को पढ़े करो, पर सिखो बेनती गुण का मत तेरी उतर बचा लो अपने मन, ये मन मैला रह गया सब किसे मैला तन तो तय मन अच्छा, ये बेनती थोड़े चरणों में मन न मैल है होमे दी जे सारे ने केवल गुरु ग्रंथ साहब जी मन एदा पाठ सुनो करो कीर्तन करो सुनो पर गुण गावत तेरी उत्तर रस्सी। बहुत धन्यवाद, बड़े प्यार नाल बेनतियां सरगुण कीतियां ने, मैनू प्रधान जी कह रहे थे बोल रहे हो सब तो गुरबाणी की लड़ी बार जो कथा चल रही है शाम को उस समय नाल थोड़ी सेवा से अमृत वेले हुक्मनामे दे विचार जो हुक्मनामा आवे जिन्हें जिन्हें प्रेमिया ने बाणी दीरीज लाइया ने बारह मास साहब की संपूर्ण कथा

हम कथे हैं किसी का नहीं जाने हैं। रखता वैसे गुलाम साज संग की चूरी की मांगो जन नानक प्यास राम कहाँ बुद्ध सब तुझ हमारी बन सके मेहमा जो तिहारी हम नाम सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाद दिख दिख छाई माया मोह परम है फूले सतदारा क्यों प्रीत लगाई एक उत्तम संत सुनियो गुरु संग से सह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास थाक तीरत की गुरु राम दास राखो शेर नाई।

कृपा दृष्ट जन जहन हरे हो ताके दाब दन कमो हरे हो रज सद कर्म सब होई दोष शास्व सक न कोई एक बार जन तुम संभारा काल फास दे दाई उबारा जैन नर नाम तिहारो कहा दारिद दोष दोख तेरा खड़ग के तुम शरण तिहारी आ बहादल उबारी सर्व ठौर महो सहाई दोष दोख ते लिहु बचाई खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप दल उबारी सर्व ठावर महो साई दुष्ट दोग ते ले बचाई खड़ग केत

एक ओंकार सदगुरु प्रसाद वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राए वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राए राव वड्डा भाग भेटे गुरुदेवा कोट बराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रप सोग अगन तिस जानना व्याप सागर दरिया साधु रंगे निरपाओ नाम जपो हर रंगे हर तन दो किस बाब ना फेड़े जम जसदार आवै नेड़े त्रिशनागन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई त्रिशनागन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

0: सत्यनाथ सर्वात ऊपर खर्च मंगा जब टकाय दीवाने तो कर लेखा हम में डर ले लेखा पीर छुटे नानका जू तेल पौड़ी अभेट न पियो हरिया पे ही कह तारी है देख गीता कची पकी तारी है जो है तो चल कोई आई
1: माया
0: दिल प्राण है तो साहब बनो सारी है प्रीति अपना आपे ही कासुवरी है कासुवरी है कासुवरी
1: अपना जो आ तो चलती सब कोई आई बारी है जिसके दीप

अवर से आनत तगली छाद सिस्टम की तू सेवा नाग लीव ऑल अदर क्लेवनेस एंड अटैच योरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ सच अ पर्सन.

अभिलाष शब्द फ्रॉम सुखमणि साहिब जिसमन बसे सुने लाए प्रीत इट इज सेड दैट ही इन हिज हार्ट द सॉन्ग ऑफ पीस ड्वेल्स इन हिम द लॉर्ड्स रिमेम्बरेंस इज अवेकेंड द पैंग्स ऑफ डेथ एंड न्यू बर्थ आर डिस्ट्रॉयड हिज प्रेशियस ह्यूमन सोल ऑब्टेन्स सल्वेशन हिज फेम शैल बी स्पॉटलेस एंड हिज स्पीच लाइक नेक्टर The name of God shall now pervade his soul. Sorrow and sickness, fear and doubt will vanish. His acts shall be pure, and men will call him a saint. And his life will be blessed with the highest glory. Nanak says, because of these virtues, this is called Sukhmani, the hymns of peace.

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानु सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

पाए हर रस, पाए हर रस बड़ नचना लागे गाए। साईं साहिब गुरु पातशाह ने वचन किया तनासरी महला पंजवां

क्योंकि मेरे फैन गुरुदास ने वचन कीता कबीर साहब एक वचन कहेंगे कबीर साहब के श्लोक पढ़ो ते बड़े कीमती वचन ने कबीर साहब के कबीर की कहेंगे कबीर गर्भ न कीजिए मते भूल के हंकार कर पवे कबीर गर्भ न कीजिए ओए ऊंचा देख आवास किते महला नु देख के भूल ना जाई किते माया नु देख के भूल ना जाई किते परिवार नु देख के भूल ना जाई क्यों

उन्होंने अगली पंक्ति शर्म आती है। आ बड़े बड़े सैयद पीर जहाँ की फोटो आदि अखबार साढ़िया मातावान भैन जाके सौ सौ के नोट दे दिए बाबा जी हाथ वेखो मेरा पुत्र की बनेगा साडा की बनेगा। भोलियो थोड़े को धन गुरु कलगीधर पातशाह की जागत जोत धन गुरु कलगीधर पातशाह का बख्श किया होया धन गुरु पंचम पातशाह का बख्श किया होया खजाना आओ बाणी पढ़ो बाणी को मंगो तो बाणी सब कुछ देगी क्यों मेरे साहब गुरु पातशाह के बचन ने बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु ने सारे। मेरी भैनो बताओ मेरे वीरो इन्हां बामणा कोल कुछ नहीं जपिया आओ कलगीधर पातशाह दे दसे होए बोल जागत जोत जपे निसबासर एक बिना मन नैक ना आने ओए पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोर मड़ी मठ फूल ना मन ना जाया करो मड़िया ते क्योंकि साहबान का वचन है हर बिन होर ना पूजो मड़े मस्थान ना जाई किसना राच ना पर घर जावा किसना नाम बुझाई।

खतरे नु दो तार दा, वैश नु एक तार दा, फिर ब्राह्मण नु जो जलो पौना है उदो रेशम दा, खतरे नु सूत दा, ते वैश नु मौज दा। आपे लड़दा रहू है दे जनेऊ दिया भी वंडियां पाइया हुई से। महाराज कहंदे पंडित जी ए जरा जनेऊ है ना ये पहला मेरी भैन नू पाओ। ओ कहन लगा जी बीबियां नहीं इस नू पा सकदे हां, साडा धर्म कहंदा। महाराज कहंदे जेड़ा जनेऊ भैन ते भरा दे प्यार विच फुट पाउंदा ते मैं ओ जनेऊ तां नहीं पाउणा। सतगुरु कहन लगे पंडित जी जरा असली जनेऊ है ना वो तो मैं पहने हुए है, जेड़ा जनेऊ मैं पहने है पंडित जी ये जरा जनेऊ है ये मेरा होगा कि नहीं? कहना होगा। तो ये टुटूगा कि नहीं? टुट भी जाना है। ये दरगाह विच नाल जाऊगा कि नहीं? ये कहना नहीं। महाराज कहते दरगाह विच भी नाल नहीं जाना, मेरा भी हो जाना है इसने। ते ए जनेऊ है जेड़ा टुट भी जाना है, ए जनेऊ है जेड़ा ये मैं नहीं पंडित जी पौना गा, मेरा तो असली जनेऊ जेड़ा ओ पाया हुआ। ते जेड़ा जनेऊ मैं पाया ना दरगाह विच भी नाल जाऊगा। धन गुरु नानक साहिब महाराज पातशाह उन्होंने जनेऊ जिन्ने भी बाणी सतगुरु ने रची है ते जिन्ने जिन्ने थाना दे उत्ते गए हैं सतगुरु, ते जेड़ी आस्था जी देवार है ये तो सारी वहमा पखंडा भरमा के खिलाफ है जेड़ी वो लिखी हुई है भाई। ये सारे वहम खंडन किते आस्था जी देवार दे विच आस्था देवार आस्था पूरियां करने वाले। एक रागी सिंह से वो कहन लग्या जी मेरा एक फर्ज है, मैनू किते कोई प्रोग्राम होवे जा ना होवे, मैं भावे कला ही होवा घर दे विच जा होर किते गया वा कला ही होवा। कहना मैं पांच श्लोक आसा जी दी वार दे ए पढ़ने ही पढ़ने आ ते जरूर पढ़ने आ। ते मेरे तो कहना बेड़े इस तरह ताप ते आसा जी दी वार नूं मैं निष्ठा नाल पढ़दा। कहना किसे गल दी घर दे विच कमी नहीं रही, जेड़े सुनते हैं उन्हां दे में नहीं रहिंदी क्योंकि आसा पूरियां कर, आसा पूरियां करन वाले जो होए ना सतगुरु ने मैता कालो जी ने कहा पुत्र कहने परिवार बैठ के सोचन लगे कि अपने घर दे विच साधु बड़े आउंदे है क्योंकि सतगुरु कहंदे सी भैणे आ जिहड़ा अपना तंदूर है ना बुझन नहीं देना आपा, कोई भी साधु संत महात्मा आउंदे उस नूं गर्म गर्म प्रशादा जिहड़ा छका के आपा तोरना। ते कहन लगे हां सा देखिए रिश्तेदारां ने भैण भरावां ने उह कहन लगे अपना कर्म ही है ते नानक नूं घर दे विच हट्टी पा दे ते आप हट्टी दे आला जिहड़ा लग्या रहूगा सौदा तोले जाऊगा। लो पिता ने 20 रुपये दे दिते नाल भाई बाला जी नूं कल्या वे जाओ बाला जी कोई चंगा सौदा जिहड़ा ओ खरीद के लियाओ जिहड़ा बहुता मुनाफे वाला होवे ते घर विच नानक तैनूं हट्टी पा देईए। सतगुरु आग्याकार बड़े सन, जो पिता जी कहंदे सतगुरु शीश नवा दिंदे सन। लो आग्या पा के सतगुरु घर तो तुर लगे ते भैन नानके अरदासा कर दी है मेरा वीर चंगा सौदा जिहड़ा खरीद के लियावे घर विच हट्टी पा लवे ते इत्थे बैठा रवे क्योंकि परिवार कहंदा जी वे अपने घर साधु बड़े आउंदे कि साधुआं नाल ही ना तुर जांदा होवे। इहदा ख्याल पोते साधुआं वाले हन तो आग्या पा के गुरु के चल पे चूड़ताने वाल कर ली तैयारी।

शब्द वाणी एक साध्य है, एक आवाज है, एक कल्पना है, एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है। वो विचारधारा मेरे प्रभु दी है, इसलिए आखिरता भी आए तो की बाणी आई, क्योंकि विचारधारा सिद्धांत मेरे प्रभु का है, इसलिए वचन कर दिता गया जैसी मैं आवे खसम की बाणी विचारधारा। पर उस विचारधारा नु उस सिद्धांत नु जिहड़ी तुक लाइन शब्दावली काफिया दिता गया वह गुरु वालों दिता गया, इसलिए बाणी गुरु भी है, बाणी निरंकार भी है। इसलिए वाहो वाहो बाणी निरंकार भी आख दिता गया, बाणी गुरु गुरु है, बाणी भी आख दिता गया। जिथे धुर की बाणी आई आख्या गया, जिथे ये आख्या गया जैसी मैं आवे खसम की बाणी, खसम की बाणी भी आख्या गया, उत्थे यह भी आख दिता गया सतगुर की बाणी, सत सत कर जानो गुरसिखो, क्योंकि दोहां का सुमेल है, सरगुण ते निर्गुण का सुमेल है। निर्गुण रूप परमात्मा जेड़ा है, उनकी विचारधारा है, उनका सिद्धांत है, कि उन्हें तुकां दे बंधन विच, उन्हें काफिये दे सुमेल नाल, उन्हें अक्षरां दे सुमेल नाल प्रगटाउण दी जेड़ी लोड़ है, वह है गुरु की शब्दावली। इसलिए दोनों की सांझी एक शक्ति इकत्र कर दिती गई, निर्गुण ते सरगुण दी, वह है बाणी। लेकिन मूल मंत्र ऐसा नहीं, क्योंकि ये अकाल पुरख की उपासना उनके बेसिक असूलों का वर्णन है, उनके बेसिक रूप गुणा रूप असूलों का, गुणा के रूप का वर्णन है। इसलिए इनके विच काफिए की लोड़ कोई नहीं, कोई बंधन नहीं, इनके विच काफिया बिल्कुल नहीं रखा गया, ना लाइन की तरतीब रखी गई, सीधा गुणा का संग्रह कि परमात्मा के बेसक गुण की ने, उनका नाम है मूल मंत्र। मूल रूप परमात्मा का बेसक गुण रूपी परिभाषा की है। तो आज के इस समागम में आप बेसक मूल मंत्र समझना है, सवेर तो जप शुरू होना है, बाणी रूप जप, क्योंकि मूल मंत्र पहला कहना दसना समझाना जरूरी है, ताकि रब की परिभाषा जानने तो बाद मनुख नू आख्या जा सके लै आ है प्रभु, आ उनके बेसिक गुण ने। हुण जप ताकि जप जपस तो बाद तैनू जाप जाए परमात्मा की, क्योंकि जाप ते जप दो लफ्ज बड़े नेड़े दे ने। जप का अर्थ है बार बार हिरदे की सतह से विचारधारा विच सुरती विच उनका विश्राम करना, जापन का अर्थ है किसी चीज को जान लेना। आप कई बार आखते हैं तैनू की जाप दे, आ तू देख आए, देख के तैनू की जाप है, अब तू की समझे। तो जापन का अर्थ है समझ लेना, जप विचों प्रभु को समझ लेना। जप है कि जिसने विचों प्रभु जापता है कि प्रभु के हो जाए, इसलिए प्रभु नू जापन लई उनू जानन लई जप जरूरी है। इसलिए गुरु पहला किन्नू जपना है, किन्नू जापना है, इन दोवां चीजां वल तोरन तो पहला उस अकाल पुरख की परिभाषा मूल मंत्र के रूप विच

is nam amisa उन अपनी चाहत पे अपनी सोच पे निर्भर करके नाम रख देते। एक मनुख इतना बुजदिल है हर वक्त डरता रहता है नाम शेर सिंह नाम बहादुर सिंह आम साडे जीवन में चीजा पहुंच नाम नाल मनुख की विरुद्धी अवस्था गुण नहीं मिलती क्योंकि जदों तक असं गुण धारण करने ने वो मिलते ने सू संगत विचों अजे बच्चा छोटा हों पता ही नहीं संगत की चीज है तो उनका ना रख दिता गया जो भी संगत मिलती वह बदल जाता इसलिए ना सत नहीं मिल लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं परमात्मा का तो मां बाप है ही कोई उनका ना कि रखना कबीर को स्वामी ऐसे उठाकर जाको माई ना बापो रे उन्हें किसी मां बाप ने पैदा ही नहीं किया स्वयं बन गया आप ही ने आप इसलिए उसका नाम किसी मां बाप ने उन्हें पछाने बिना नहीं रखा झूठ ना ले उसका नाम है सत सत नाम इसलिए है क्योंकि उन्होंने जिस रूप में ते जिस गुण में किसी ने वेख्या भगत जन ने जिन्हें जुड़ना सी उन्हें जिस गुण रूप में वेख्या उन्हें ओह जिहा उसका नाम रख लिया उनके गुण विचों उनके नाम ने चल गया उनके कर्म विचों उनके नाम ने

कि मैं तेरे गुणा की लिस्ट बनाना चाह तो किवें बनावा, क्योंकि तेरे विच गुण इन्ने ज्यादा ने, तू फिर गुणवंता, तू गुणा का खजाना है, इन्ने गुण ने कि मेरी जेब गिन नहीं सकती। हमारी जेब एक प्रभ हर के गुण अदम अथा तेरे गुण बहुत, ते हर एक तेरा गुण ही तेरा नाम है। जे तू निर्भव है तो तेनू निर्भव आख्या गया, जे तू निर्वैर है तो तेनू निर्वैर आख्या गया, जे तू अकाल मूर्त है तो तेरा नाम अकाल मूर्त क्या, क्योंकि तेरे गुण ऐने ने जेड़े गिने नहीं जा सकते, इसलिए तेरे नाम भी ऐने ने जेड़े गिने नहीं जा सकते। पर सर्व नाम कथे कवन, तेरे सारे नाम की लिस्ट कौन बनावे, क्योंकि हमारी जेब एक प्रभ हर के गुण अगम था। हम क्यों कर जप रहे हैं, मैं भला तेरे गुणा की लिस्ट किवें बनावा। ऐनी गल जरूर है पर सर्व नाम कथे कवन कोई नहीं कर सकता। कर्म नाम वर्ण समर्थ, जिन्हें तेरा जेड़ा कर्म वेख्या, जिन्हें तेरा जिस गुण नाल संबंध वेख्या, उन्हें तेरा ओ ही नाम रखा। इसलिए तेरा नाम झूठ नहीं, मेरा नाम झूठ हो सकता, तेरा नाम झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि गुण पे आधारित है। तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समर्थ, इसलिए जदों मैं तैनू जपना ते तेरा नाम जेड़ा मेरे जपन विच हिस्से आउंदा है, वह सत नाम अक्सर वाहिगुरु के सत नाम शब्द का भेद नहीं जानते। ठीक है सरगुण निर्गुण निरंकार है, पर सरगुण जेड़ा है वो गुरु रूप है, निर्गुण जेड़ा है वो परमेश्वर रूप। इसलिए वाहिगुरु लफज जेड़ा है वो गुरमंत्र है, और बाणी ने भी मान लिया वाहिगुरु गुरमंत्र है। जब हम जिथे प्रभु के नाम की गल आई है उत्थे हमेशा सत नाम आए,

0: का जिससे मूल मंत्र परमात्मा भी उस अजोनी स्वयंभंगी स्वरूप रखना जी नु किमें जाना गुरप्रसाद वह हम जो गुरप्रसाद होना है ना उनका ना जप है जी गुरु की रहमत होनी है ना वह जप भी होनी है जी मैं किमें जाना कह लगे हम जप पढ़ एक जप सारा है कि उन्होंने जापन का जरिया प्रभु जानन का जरिया उनकी पछाण पैदा करने का जरिया ताकि तू उन्हू चंगी तरह पछाण लै इसलिए तेनू जप की लड़ पैनी है गुरु ही यह गल समझा रहा है क्योंकि गुरप्रसाद एक दरमियान की कड़ी हो गया है फैसला हो गया गुरु की कृपा नाल गुरु ने रहमत करके अगला राह दसना लै जप ताकि तू जाप सके जान सके वो आप अगले दिनों में विचारना जो सतगुरु ने बख्शिश करनी है साडा मकसद बाणी की अंतरीवी विचारधारा नाल जुड़ना किसी भी वाद विवाद में नहीं पैना साखियां अंदर अनेक तरह के वाद विवाद पैदा होंगे इसलिए मैं उस पास नहीं जाना चाहता साडा मकसद है गुरमत गुरबाणी हिरदे दहराइया तक बैठ के समझिए इन शब्दों खिमा जा चुका हाँ
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ